वजह से होते हैं। ताहम शहरी कार्य की वजह से लोग सालों के दौरान फितरत से दूर हो जाते हैं। जब हम रिहायश गाहें, काम की जगहें, सड़कें कहते हैं तो सब्जाजारों के लिए बहुत कम जगह रह जाती है। जब उनके कुदरती मस्किन उनसे छीन लिए जाते हैं तो बहुत सी जानदार नस्लें शहरों को छोड़कर अपने लिए मुख्तलिफ जगहें तलाश कर लेती हैं। शायद वो वाहिद अनवा जो हम बेघर नहीं कर सकते वो परिंदे हैं। बेशक शहर की ज़िंदगी उन पर भी असरअंदाज होती है, लेकिन वो फिर भी जहाँ चाहें उड़ने और उतरने के लिए आज़ाद हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक आसमां से है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब अंधेरा छा जाता है तो परिंदे कहाँ जाते हैं? क्या उनके पास घर भी हैं जहाँ वो महफूज रह सकें? क्या वो दरख्तों की खोखलियों में जाते हैं या अपनी शाखों में छुप जाते हैं? आज हम अनातोलिया में परिंदों के महलात और परिंदों के घरों के बारे में बात करना चाहेंगे जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। बर्ड हाउसेस इंसानों की हमदर्दी के एहसास की सबसे नुमाया मिसालों में से एक हैं। एक नन्ही मखलूक के लिए मखसूस पना गाहें बनाकर उसे खतरा से बचाने के लिए ज़मीर और हमदर्दी के जज्बात के अलावा और कौन सा जज्बा बयान किया जा सकता है? ये मालूम है कि कबूतर के पहले घर 800 साल पहले पत्थरों में तराशे गए थे। तहरीरी ज़राए मेसोपोटामिया में परिंदों के घरों के वजूद का जिक्र करते हैं। बाद में मुख्तलिफ ममालिक और सकाफ़तों में परिंदों के घर नज़र आने लगे हैं। कुछ मुहक्किकीन इन ढांचे के शऊर की आला सतह के इशारे के तौर पर बयान करते हैं। टावर की शक्ल के डोकोर्स हेलेनिस्टिक और रोमन अदवार में बनाए जाते रहे हैं। परिंदों के घर तुर्किस्तान में असलान बाबा के मकबरे, पाकिस्तान में लाहौर का शाही किला, भारत में आगरा फोर्ट, लाल किला और ताजमहल में मिल सकते हैं। लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम वाकई बात करना चाहते हैं वो अनातोलियाई सरजमीनों में परिंदों के लिए ख़ास तौर पर बनाए गए ढांचे हैं। जैसा कि हमने अभी जिक्र किया, दुनिया की दूसरी तहजीबें भी परिंदों के लिए घर बनाती रही हैं। ताहम अनातोलिया में परिंदों के घर उनसे मुख्तलिफ हैं। दीगर सकाफतों की तरह ये घर परिंदों के शिकार या फ़ायदा उठाने के लिए नहीं बनाए जाते, ये सिर्फ परिंदों की पनागाह के लिए बनाए जाते हैं। तो उसके करने का मकसद और तरीका भी मुख्तलिफ होता है। बर्ड हाउस उन जगहों के छोटे नमूनों के तौर पर बनाए गए हैं जहाँ लोग इन ज़मीनों में रहते हैं, इसीलिए इसे अक्सर बर्ड हाउस या बर्ड पैलेस भी कहा जाता है। मगरबी सयाह या सफारतकार जो 1900 की दहाई के अवाइल में अनातोलिया आए थे, जानवरों खासतौर पर परिंदों में दिखाए जाने वाले दिलचस्पी से बहुत मुतासर हुए। अपनी याददाश्तों में इतालवी मुसनिफ एडमोंडो अमेसिस बताता है कि इस्तांबुल में सुल्तानों और अफराद के जरिए लातादात कबूतरों को खाना खिलाया जाता था और यह कि तुर्क परिंदों की हिफाजत भी की जाती थी। जर्मन मार्शल हेलमेट वोन मोल्टके ने उस्कुदार में बिल्लियों के लिए मुख्तस एक बिल्ली हस्पताल और बायजीत में कबूतरों के लिए एक जगह का जिक्र किया है। फ्रांसीसी सयाह जां दी थ्यूविनोट हैरत और तारीफ के साथ लिखते हैं कि बहुत से लोग बाजारों में जाते हैं और परिंदे खरीद कर आज़ाद कर देते हैं। परिंदों के घर की पहली मिसालें 13वीं सदी में सलचुक दौर में तामीर की गई इमारतों में पाई जाती हैं। तहरीर ज़राए में सिवास में सिफाई मदरसे का जिक्र पहले ढांचे के तौर पर किया गया है जहाँ परिंदों का घर मिला था। उस्मानी सल्तनत के दौरान मजबूत बुनियादों की रिवायत की बदौलत परिंदों के घर बड़े पैमाने पर बनने लगे और इन ढांचे की शिनाख्त उस दौर के दारुलहुकूमत इस्तांबुल से होती है। महल, मदरसा, मस्जिद, सराय और हमाम, पुल, इबादतगाह, चश्मे, मकानात, मुख्तसर ये कि इंसानों के लिए बनाए गए हर इमारत में बर्ड हाउस मिल सकते हैं। ये घर सामने की तरफ बनाए गए हैं जहाँ परिंदे महफूज महसूस करेंगे और सख्त मौसमी हालात से कम मुतासर होंगे। खिड़कियाँ जो सूरज से जलती नहीं हैं, हवा से नहीं टकराती हैं और सर्दी से भी मुतासिर नहीं होती हैं, इन परिंदों के लिए मखसूस होती थीं। परिंदों के घर उसी तर्ज की खसूसियत को जाहिर करते हैं जिस इमारत पर वो वाक़ हैं और उन्हें तामीराती दस्तावेज़ात के तौर पर बयान किया जाता है। अनातोलिया के लोग पानी के बर्तन बनाते थे, अगरचे छोटे ही क्यों न हों। जानवरों के पीने के लिए वो इमारतों के एक तरफ बनाते थे और तमाम जानदारों की देखभाल करते थे। ताहम बुर्सा में एक ऐसा ढांचा है कि जिस वक्त उसे बनाया गया था उस वक्त यह दुनिया की किसी भी चीज़ के बरअक्स नहीं था। ये इमारत जो 19वीं सदी में सार्स के लिए बनाई गई थी, दुनिया के पहले जानवरों के हस्पताल के तौर पर जानी जाती है।
बर्ड हाउसेज